चमन में रक्स करे, आओ सेने चमन में रक्स करे, साज लेकर घटाएं आती हैं, देखकर उनकी